मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत हिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

ईस्ट एफएम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण

चीनत न पिव आप अपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम

करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

Ωραία, μην είσαι σουνί. Απ' κόντσι αδακάρα για γάικα και σάτ date πε τζάνα τζάχενγκε. Καϊλί Μινόκ, Νικόλ Κίτμαν για Ρόντα Μπέρτσμορ. Σε μην είσαι σαβαλάτ που τσε εκ interviewer ne prime minister ko to teen naam diye kaha ke aap kiske sath jana chahenge to ekdam se australia ke pradhan mantri albanese unhone kaha podcast mein interview ho rahi thi unhone kaha of course kylie minogue bas sara australia unke piche pad gaya ke aapne inappropriate baat keh di hai तो फिर सवाल ऐसा था जवाब में उन्होंने कुछ तो कहना था अगर उनकी मर्जी भी वो एडमायर शायद करते हों तो उन्होंने अगर ये कह भी थे तो इसमें इनएप्रोप्रिएट कहते हैं ये गैर इखलाकी है जो आपने बात कर दी है तो आजकल समय किसी औरत का नाम लेने पर वो कहते हैं कि ये आप ना बहुत गलत बात कर रहे हैं औरतों के हुकूक को पामाल कर रहे हैं आप उनका नाम लेकर मेरी समझ में नहीं आया ये वबाल किस वजह से है तो समीन आप मुझे बता दें किसी को अगर समझ में आई है कि बेचारे को तीन नाम दिए गए उन्होंने कहा ऑफ कोर्स काइली मिनोग तो इसमें क्या बुरा है प्लीज शायद मेरी समझ में नहीं आया आपकी समझ में आ गया हो कि क्यों ऐसा हुआ है एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर ने काइली मिनोग से माफी मांगी है अब आप मुझे बताएं कि कहां हम जा रहे हैं

0: अपने चाहो।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिनॉय स्ट्रीट, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।

0: आगे हम आपको वियतनाम ले जाएंगे, वहां क्या हो रहा है, जो दुनिया भर में हो रहा है वो भी वियतनाम में हो रहा है, लेकिन उसका हवाला आपको देंगे। टुडे इन हिस्ट्री, यस सर, आपने कहा है, आपको पता है आज का दिन जुलाई 6, 1947, समय एक ऐसा हथियार उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई, बनाने का काम शुरू हुआ था आज 1947 के। आज तक इस हथियार के 75 से 100 मिलियन जो हैं हथियार, ये दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, 100 मिलियन, 10 करोड़। इसका नाम क्या है? समझ, इसका नाम आप सब जानते हैं, AK-47। AK-47 बनाने वाले थे मिखाइल कलाश्निकोव। समय ये रूसी थे, रशियन थे, और उन्होंने बाद में कहा था कि ये मेरी बहुत ख़राब इजाद थी, मुझे अफसोस है अपनी इजाद पर, क्योंकि समय फिर एक एक मुल्क ने ये हथियार लेना शुरू कर दिया, एक एक मुल्क ने कैसे फिर जाने लेने के लिए ये हथियार इस्तेमाल किया, AK-47। और आज देखें 100 मिलियन 10 करोड़ हैं दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, हो रहा है ये हथियार। और आज दलाई लामा की बर्थडे, समझ, आज दलाई लामा 91 साल के हो गए हैं। यासर ने बताया है कि इनका नाम क्या है, जटसुन जम्फल ग्वांग लबसोंग यशे टेंजिन ग्यात्सो, तो इसको सब को मिला के इट्स टेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा का नाम। बहुत अच्छे, आज 91 साल के हो गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 43, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आज 80 साल के जॉर्ज डब्ल्यू बुश। सिल्वेस्टर स्टलोन, समझ, वो अमरीकी अदाकार एंड फिल्म मेकर, आज 80 साल के हो गए, जिनकी समझ, जिनका जिस्म दिखाते तो बस ताकत का मजारा होता था। और रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर ऑफ धुरंधर, एज 41, आधी एज के हैं ये सिल्वेस्टर स्टलोन से। बहुत खूब, थैंक यू यासर। सोनल मोदा को बहुत गाना पसंद आया, आई एम सो हैप्पी, मे बी इट्स दिस वन
1: जी, जाने कहाँ गए वो। ये गाना फिल्म जोकर का है, 1970 की मूवी है, जिसको मुकेश ने गाया है, जिसको हसरत जयपुरे ने लिखा है, और जिसकी धुन संग जय किशन ने बनाई है। ये गाना राज कपूर पे फिल्माया गया है, गाना ब्यूटीफुल गाना है, सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और ये भी गाना आपको पसंद आएगा।

0: जी हाँ, फरखंदा शेख भी आई हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना।
1: वेलकम परवीन, मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ। सैटरडे को आपको मिलकर बहुत खुशी हुई है। और दूसरा मैंने ये कहना था, हमें भी कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो कह सके कि हमारी लैम्बोर्गिनी चलाकर देखो, पता नहीं वो दिन कब आएगा। अल्लाह हाफिज़।
0: हाँ, कोई नहीं देता, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि इतनी कीमती गाड़ी अगर वो कहीं हादसा पेश आ जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही फरहंदा।
2: प्रवीण जी, लगन मोरे मन के, ये गाना फिल्म बाबुल का है, 1950 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और शकील बदायूं ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर किशन ने बनाई है। ये गाना नरगिस पे फिल्माया गया है, उसके साथ दिलीप कुमार भी ये मूवी में काम कर रहे थे। उसके सब गाने अच्छे हैं। ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: Kenya's premier Asian mix. Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.

जैसा मुझे एक बात बताएं कि ये जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या है? जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट आजकल कौन सा तबका, कौन है लोग इंडिया में, कौन सा तबका है ये टेस्ट्स करवा रहे हैं, जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट? सादा अल्फाज में मुझे समझाएं कि ये किस तरह का टेस्ट है जो लोग ले रहे हैं, और कब ले रहे हैं, कब करते हैं, और कौन से लोग हैं जो इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगन मोरे मन की सजन मन नहीं जाए, बिल्कुल रूपल, आपका बहुत वसी है टेस्ट, वेरी वाइड टेस्ट, आपको पसंद आया। The world is navigating an era of complex transitions.

characterized by major geopolitical reordering, economic recalibration and severe localized crisis. ये जो बड़े बड़े अल्फाज हैं ना हमें आम लिसनर्स के लिए बड़े मुश्किल हैं. अब जो इन इतने इतने बड़े अल्फाज में कहा गया है एक्चुअली ये है कि सादा लैंग्वेज में समिन इतनी ज़्यादा सियासी बदलाव आ रहा है समी यही नहीं ज़मीनी बदलाव आ रहा है जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहा है और बहरान पैदा हो रहे हैं देश के अंदर और देश के बाहर. एंड इन ऑल दिस केओस वी काम आरसेल्व्स टू लिसन टू बेमिसाल अंदाज. क्या बात है यासर, दैट्स गुड. नियत शौक भर ना जाए कहीं तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं. आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर ना जाए कहीं. उफ क्या शायरी. आई डोंट नो ये यासर कौन है लेकिन ब्यूटिफुल. इट्स अ टाइमलेस सोल स्टरिंग गजल बाय द लेजेंडरी उर्दू पोएट नासिर काजमी. नासिर काजमी ने नियत शौक भर ना जाए बैनूर जहां ने भी गाया है. ओके क्योंकि गजल का फिर वो माहौल बनाना पड़ता है ना. मैं किसी दिन जरूर शुरू में या आखिर में करूंगी. रंजन विनोद लगन मोरे मन की. ओहो सबको पसंद आया है लगन मोरे मन की. शब्बीर अहमद अस्सलाम वालेकुम शहजादी साहिबा. जबरदस्त लता जी का और या आज बहुत ही कमाल के कुछ चंद. और अमीर अली राना टू मेक श्योर द कपल टेकिंग. अच्छा ये उन्होंने आंसर दे दिया है पर मैंने सारा नहीं पढ़ा था कि आपको ना पता लगे कि क्या है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट और क्यों लोग कौन से लोग हैं जो ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं.

0: अच्छा, मिसेस पटेल ने कॉल किया है और कहा है कि आपको पता है ना, आमिर खान जो एक्टर जिन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की है, तो कहते हैं इनके जो पिता थे, इनके जो वालिद, मुझे लगता है चचा थे, जो कि आशा पारेख, उनके साथ उनका ताल्लुक था लेकिन शादी नहीं की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चचा थे, आपने कहा है कि पिता थे उनके, आमिर खान के। खैर, उसका वो कहते हैं कि खानदान में हो सकता है इस तरह की बात। अब आरफा उंगटा रुंगाई, व्हाट अ वंडरफुल आंसर आपने दिया है। कहते हैं अभी अभी आप अश्विन दोषी के साथ बात कर रही थी तो आपने कहा कि कई गानों में, गीतों में आप लता की आवाज़ को पहचान नहीं सकती, तो मैंने कहा हाँ। कहते तुम्हें पता है क्यों? इसलिए कि जब कोई नई नई गायिका आती थी ना, तो वो आपसे, अपने से पहले जो हो चुकी हैं ना गायिकाएं, सिंगर्स, उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी। तो मे बी लता वॉज ट्राइंग टू कॉपी नूर जहां और गीता दत्त और समरी शमशाद बेगम और समबडी। तो कहते हैं कि इसलिए उनकी आवाज़ अपनी, फिर बाद में दे वुड एस्टेब्लिश देयर ओन स्टाइल और उसमें गाते। कहते मुकेश ने कुंदन लाल साइगल को कॉपी करने की कोशिश की थी, तो इसी वजह से। दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन आरफा उंगटा रुंगाई।
1: Kenya's premier Asian mix,
2: East FM,
1: is celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix,
1: your favorites from the

0: dead following the violent attack on the Linda Mwananchi convoy in Kiambu, Kisii County. 36-year-old Vincent Osiemo, popularly known as Mapinduzi, died after reportedly falling from a moving vehicle as it came under a barrage of stones during Friday's chaos. Police have arrested 8 suspects, while detectives have summoned Jaribari Church Member of Parliament Zahia Janda to record a statement as investigations into the violence continue.
1: Hatutaki 2007 ijirudie katika inchi yetu. Vijana, mauaji si ya maana.
0: That's the news update on East FM.
2: East FM News. All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: अच्छा अभी जो मैंने कहा है कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट तो मीर अली राणा आपने कहा है टू मेक श्योर दैट द टेस्ट बिफोर या बट हु टेक्स इट एंड व्हाट इज इट आपने बताया है कब लेकिन व्हाट द आंसर जो मुझे मिला है शनाज बट फ्रॉम तंजानिया करेक्ट आंसर बिल्कुल सही कि ये टेस्ट करता क्या है
4: Hello, Pravinji. Good morning. Mrs. Engineer, Pravinji, welcome. You must have a good weekend. Pravinji, subha baat ho rahi thi. Jab hum kisi dharam sthan pe jaate hain, to hum apne dharam to nahi badal sakte. Pravinji, wo baat nahi hai. Ye jo gurdwari, mosque, mandir, jo bhi hain, wo dharam sthan hain. Lekin hum kisi liye jaate hain? भगवान भगवान तो एक है बेशक वो अपना गुरुद्वारा हो बेशक वो मॉस्क हो बेशक वो मंदिर हो उधर जाते हैं तो हम भगवान के लिए जाते हैं गॉड के लिए जाते हैं उनकी श्रद्धा होती है उनके लिए जाते हैं धर्म तो कोई किसी का चेंज कर ही नहीं सकता कभी मैं मंदिर जाती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है मैं हिंदू बन गई कोई मुझे मजबूर भी नहीं करता सो धर्म स्थानों पर जाना जो है वो रॉन्ग नहीं है वो एक दूसरे का प्यार है हम इकट्ठे रह रहे हैं और हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं और भगवान तो एक ही है हा? अल्लाह एक है वाहिगुरु एक है राम भगवान सभी ये एक है प्लीज उसमें कोई धर्म चेंज करने की कोई बात नहीं है थैंक यू वेरी मच टेक केयर गुड डे
3: नहीं वो बात कोई और ही थी ना वो किस्सा कोई और था बता रहे थे कि वो हम राम में भी बिलीव करते हैं हम मुसलमान हैं तो इस तरह से कुछ हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट दो धर्मों में मैं उसकी बात कर रही थी ऑफ कोर्स हमें जाना चाहिए एक दूसरे के धर्म स्थानों में क्यों नहीं खुदा एक है वो हर कोई मानता है और रसिला क्या कहती हैं रसिला शाह It's a blood test that dash dash dash wonderful. बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है मैं थोड़ी देर के बाद आपका आंसर पढ़कर सुनाती हूँ ओके सॉरी आई जस्ट mentioned एज इट वॉज रिलेटेड एंड माई आंसर ओके बात यह है समिन के दिनेश पपुर मैंने बहुत ढूंढा है न जाने क्यों ये नजर नहीं आ रहा जब मिलता है ना ये इट वुड हैव बीन सो एप्रोप्रिएट फॉर व्हाट वी आर टॉकिंग तो दिनेश मैंने कोशिश बहुत की है और सोनल मोदा जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट इज कॉल्ड GCT समझ अगर आपको कोई पूछे ना GCT तो आपको पता होना चाहिए कि इट मींस जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट और आपने भी सोनल करेक्ट बता दिया है बिंदु आपने कहा है या DNA टेस्ट को ओके ओके जी आपने सही बताया है हिंदी में पर अब देखते हैं ये क्या कहती हैं
5: अनुपमी जी कहते डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है फिर भी वो उस डाली पर बैठता है क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा है क्योंकि उसको
3: उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा ये बड़ी अच्छी बात है

समय हम बात तो कर रहे हैं जेनेटिक कंपेटिबिलिटी, लेकिन मैंने आपको कहा था आपकी हंसी के बारे में कोई रिसर्च आई है. इससे पहले जबीन हिरानी, वेल डन, यू हैव गिवन मी ऑल द डिटेल्स आई नीडेड. मैं करूंगी थोड़ी देर के बाद, आपको बताती हूं समन टेस्टिंग के बारे. लेकिन हंसी समन समन हंसी छोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, डीप हो सकती है, फेक हो सकती है, थोड़ी सी भी हंसी हो सकती है, या आप जम के हंस सकते हैं, है ना, बेकाबू होकर हंस सकते हैं, गिगल कर सकते हैं, हार्टी लाफ्टर आपकी, ये सब तरह तरह की हंसी है. समझ कौन से जानवर, अब जानवर भी हंसता है, हमारी तरह नहीं लेकिन हंसता है वो. आप जानवर मुश्किल है देखना कि वो खुश है कि नहीं, लेकिन वो हंसते हैं. लेकिन एक जानवर है जिसके साथ हमारी हंसी मिलती है, और रिसर्चर्स ने ये देखा है चिंपैंजीज के साथ. हम और चिंपैंजी एक जैसे हैं, समझ, हमारे रिश्तेदार ये ठहरे. मगर हंसी में कहते हैं इनकी रिदम, समझ, रिदम जिस बीट के साथ, जिस वक्फे के साथ आप कुछ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1 2 3, या मैंने कहा 1 2 3, तो वक्फा आपने देखा एक में बहुत तेज था एक में. लेकिन चिंपैंजी और हमारी जो हंसी है ना समिन, इसमें जो रिदम है हमारी और इनकी एक जैसी है. हंसी के स्ट्रक्चर को हम दोनों किस तरह बदलते हैं हालात देखकर, चिंपैंजीज और हम एक जैसे अच्छी बात है. खैर आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आंसर क्या है.

0: लता हो गई थी और कोई कल्पना ने अपना मैसेज डिलीट। चलो यहां पर है शमीम, जी हाँ वो मैंने बता दिया है। अमीना, जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या है? इट इज बेसिकली हाउ विल टू पीपल डीएनए मैचेस अप व्हेन इट कम्स टू हैविंग हेल्थी बायोलॉजिकल किड्स। या ये था मकसद, समिन जिन्होंने शादी करनी है, युवा तबका जो है जवान, वो करवा रहे हैं जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। और अभी अभी जो देकर गई थी जबीन हिरानी, कहती हैं जेनेटिक कंपैटिबिलिटी रिफर्स टू टू अ मैटर इन विच टू इंडिविजुअल्स दे वॉन्ट टू डिसाइड वेदर दे कैन सेफली कंसीव चिल्ड्रन टुगेदर विदाउट अ हाई रिस्क ऑफ पासिंग ऑन सिवियर हेरेडिटरी डिजीजेस। समझ, अगर एक लड़के ने और लड़की ने शादी करनी है तो ये जो टेस्ट है ना जेनेटिक, वो करवा लेते हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों के डीएनए में कुछ ऐसा तो नहीं कि बच्चा बीमार पैदा हो, ठीक है, वो देखने के लिए कि माँ या बाप से बच्चे को एक बीमारी तो मुंतकिल नहीं हो जाएगी। इट्स और कहते हैं कि इट स्पेसिफिकली मेजर्स वेदर बोथ पेरेंट्स कैरी द एग्जैक्ट सेम रिसेसिव जेनेटिक म्यूटेशंस। समझ ना, आपके जीन्स म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो भी ऐसा भी हो सकता है, या ना भी उम्र के साथ भी नहीं, वैसे ही म्यूटेट हो सकते हैं, आपके जीन्स बदल सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। It could result in conditions like cystic fibrosis हो सकती है, cystic fibrosis और spinal muscular atrophy। समझ, ये जो muscular है ना आपका muscle कम होने लगता है, पतला दुबला होने लगता है, atrophy होने लगता है, तो ये ऐसी चीज़ें हम avoid कर सकते हैं अगर हम सही बंदों के साथ शादी करें। तो समझ, ये शादी जिन्होंने करनी है ना उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कर लें। और सोनल, यही सोर्स से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली थी जबीन हिरानी की। अब ब्रेक।
1: इट्स 12:20 on myjobsinkenya.com.
2: Baba Nyumbani is recruiting 2 senior child and family social workers to be based in Kitale, Trans Nzoia County and Rarieda, Siaya County. Bachelor's degree or diploma in social work, sociology, psychology, community development or a related social science discipline, and a minimum of 5 years of direct field-based social work experience with at least 3 years in child welfare, child protection or family support context is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Lemil Company Limited is seeking to recruit a qualified and detail-oriented accountant to join their team. Bachelor's degree in finance, accounting, business administration, economics, BCom, or a related field, CPA qualification completed up to at least intermediate level and a minimum of 2 years relevant accounting experience is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
3: East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: मंजुला गोरसिया कहती हैं जैसे कि ये फिल्म 3 घंटे की थी आपका बेमिसाल भी 3 घंटे का कहती लेकिन ये 3 घंटे की फिल्म ना चली नहीं ये फ्लॉप हो गई थी जी हाँ मुझे भी याद है मेरा नाम जोकर वेरी लॉन्ग फिल्म मुझे लगता आधा घंटा आम से ज़्यादा लंबी थी पर आपने कहा है कि मुझे तो बहुत पसंद आई फिल्म बट वेल इट डिडंट डू वेल अभी अभी समझ गाने में मुकेश कहते हैं कभी मसखरे से दिल ना लगाना मसखरा क्या मतलब है इनका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे मसखरा कौन होता है मसखरा कभी उसके साथ दिल नहीं लगाना वो कह कर गए अच्छा यहाँ पर आंसर्स हैं जयश्री आई बिलीव इन एवरीबडीज गॉड क्या बात है बहुत अच्छे
1: वालेकुम परवीन आप तो इतना मजबूर कर देती हैं फोन करने के लिए क्या गाना लगाया है इतना टचिंग गाना है परवीन कि मैं कोई आपको बता नहीं सकती अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही सुनाती रहे इट इज सो टचिंग परवीन
0: हाँ और फरहंदा मुझे पता है आपको आगे भी 2-3 गाने हैं मैंने रखे जो बहुत टचिंग है इनमें से एक मैं आपको भी डेडिकेट करूँगी सैड गाना रमेश हरिया आपने कहा है अद्भुत कलेक्शन है आज एक एक गाना सुपर किसी ने मुझे एक दिन लिखा था धीरूभाई लखानी ने कहते थे कि आपकी चॉइस सुपर से ऊपर है क्या बात है पुरानी यादों में खो गए हैं हम दिल से शुक्रिया बहुत अच्छे रमेश हरिया आई एम सो हैप्पी कि यू आर ट्यून्ड इन 2 दिन से आप नहीं ट्यून्ड इन भी थे मुझे ऐसा लग रहा था
2: प्रवीण जी छुप गया कोई रे ये गाना फिल्म चंपा कली का है 1957 की मूवी है जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको राजेंद्र किशन ने लिखा है और जिसकी धुन हेमंत कुमार ने बनाई है ये पुराना गाना सुनाने के लिए आपका शुक्रिया गाना अच्छा लगा
0: और शब्बीर अहमद कहते हैं शहजादी साहिबा आई लव लता जी सॉन्ग थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग ग्रेट अमीर अली राना परवीन जी साइंस फाइनली वन रिगार्डिंग मैरिज पंडित्स विद कुंडली इज आउट सब पहले कुंडलियां मिलाते थे ना ये अमीर अली राना ने अच्छा कंपेयर किया है आजकल डीएनए टेस्टिंग हो गई है और अमीर अली ये ज़्यादा प्रिसाइज है कुंडली शायद इधर उधर हो सकती है लेकिन ये डीएनए नहीं सोनल मोदा मस्खरा आपने फर्स्ट कॉलर सोनल मोदा ने मुझे जवाब दे दिया मस्खरा होता कौन है समझ आइंदा कभी इस्तेमाल हो किसी गाने में या कोई किसी की गुफ्तगू में तो आपको पता होना चाहिए दीपक वडगामा मेरा नाम जोकर इंडिया में नहीं चली जब रशिया में रिलीज हुई वहाँ बहुत चली 4 घंटे की मूवी थी नॉट 4-3 हैं आपने कहा है 4 घंटे राज कपूर रशिया में बहुत पॉपुलर थे जी हम हमेशा यही बात करते हैं कि वो बहुत पॉपुलर थे रशिया में आवारा हूँ भी वहीं पॉपुलर

0: क्या बात है, क्या जबरदस्त, क्या, अब तो मेरा ख्याल है लता के बारे में कुछ नहीं हम कह सकते. She's beyond words, beyond any description.
1: हाय प्रवीण, आपको तो मैं इतना सलूट करती हूँ. आप मेरे सामने आए तो मैं तीन बार आपको सलूट करूँ. अल्लाह हाफिज.
0: वैसे फरहंदा मेरे साथ थी ऑन सैटरडे एक महफिल में, और अगर उन्हें पता होता कि मंडे का ऐसा है तो वो मुझे तो वहाँ सलूट कर देते. और थैंक यू ग्रेट फरहंदा. और प्रवीण जी, बींग कल सबा सबा है, अब आप मुझे बताएं आप आएंगी कि नहीं. मैं पूरी कोशिश करूँगी अमीर अली राना, अगर कोई ऐसे हंगामे की का इशारा ना हुआ तो फिर मैं ज़रूर, और अगर कोई ऐसा ऐसी बात होती है तो मैं. और प्रवीण जी, आज तो कुछ कमाल धमाल हुआ है. ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते. आपको पता है ये फिल्म अमर थी, फीचरिंग निमी. So many feelings and emotions in that song. Oof, thank you so much. और ये हैं रूपल, रूपल बहुत शुक्रिया. और शबीर अहमद इन लंडन, वॉट अ मास्टर पीस. अच्छा, अगर वो मास्टर पीस था शबीर अहमद, तो दिस इज़ फॉर यू एंड सलीम.

0: और पास आ गए हैं अश्विन दोषी इस गाने को सुनकर बड़ी अच्छी बात है लाइन भी मिल जाती है और आपकी लाइन क्लियर होती है
1: थैंक यू बरुण जी ये ड्यूएट मुझे बहुत पसंद पड़ा
0: यस
1: ये थी फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया
0: ओके
1: पर्दे पे मधुबाला
0: और क्या चाहिए और मधुबाला का चेहरा
1: मधुबाला और भारत भूषण गा रहे
0: अच्छा भारत भूषण
1: और म्यूजिक मदन मोहन और गीत लिखे थे सभी राजेंद्र कृष्ण ने
0: बिल्कुल
1: और गुड कॉमेडी फिल्म थी परवीन जी मधुबाला रियली एक्टेड वेरी वेल एंड फिल्म हिट बन गई
0: ये लो यही कहते हैं कि मधुबाला में कॉमेडी करने का भी टैलेंट
1: था This of course this film shows even आपने वो भी देखी थी आपको याद है मिस्टर एंड मिसेस
0: 55
1: वो उसमें भी ऐसी कॉमेडी थी
0: बिल्कुल
1: लोग को पसंद पड़ा
0: हाँ.
1: और फिल्म हिट बन गई और ये हाँ. मदन मोहन का म्यूजिक था मदन मोहन का दूसरे गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे
0: बहुत अच्छे
1: यस
0: और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन आपने भी बहुत एंजॉय की है प्लेलिस्ट और जबरदस्त कहा है इस डुएट को एक और सुन लें

0: देखते हैं कि आपने क्या कहना है. छोटी सी कॉल.
1: हेलो प्रवीण जी, मिस बिंदल है. प्रवीण जी, आपका प्रोग्राम क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास इतने, लेकिन आपका प्रोग्राम सुनते सुनते खाना बहुत अच्छा बनता है और बनाने में मजा भी बहुत आता है. थैंक यू, कीप इट अप, टेक केयर, गुड डे.
0: बना रही हैं आप संगीत कड़ी या फिर संगीत पालक? कमाल है मिसेस दंजल, देखा ना ये मल्टीटास्क करने में कितनी माहिर हैं. खाना भी पकाना है, घर के काम, बाहर के, और हमारे प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा. बहुत शुक्रिया जिन्होंने 3 घंटे समय लगातार सुना है प्रोग्राम. मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया. जो आए गए हैं उनका भी. आगे नीलूफर आफ्टरनून अफेयर में मुझे इजाज़त.

0: मैं सीन और हर्ड की बात कर रही थी कि व्हेन द लास्ट टाइम समवन हर्ड यू और मेड यू फील अंडरस्टूड एंड आई गेट सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम समवन आई एब्सोल्युटली अडोर. हिज नेम इज सुधीर बट आई कॉल हिम पापा जी. कहते हैं बाबर शॉप पे बैठ के तुम्हारा शो सुन रहा हूँ बहुत सालों के बाद एंड वॉज रिमाइंडेड वाई यू आर अ स्टार. हाई यू मेड माई डे पापा जी. यू आर सेइंग यू आर ट्रैवलिंग बट यू विल बी बैक वेरी वेरी सून इन टाउन एंड सेइंग यस आफ्टर ऑल आई एम पंजाबी एंड वी लव आवर चिकन. Love you, kiddo. I love you too, Papaji. This made my day. You made me so, so happy. Thank you so much. I've got a message here that, yes, life is not easy, but well, as you say, keep smiling and do your good karmas. Upar wala to notice karta hai, koi kare na kare. Jayashree is saying, I really don't care. Nobody understands me. You are one super cool woman, I know. Yes, I've got another message here. And you said that after losing someone I loved, a friend simply sat beside me in silence. No advice, no questions, just their presence. That's when I felt understood. Please don't mention my name. Anyways, thank you so much for that. I truly appreciate your company. Dil se dil ki baatein hoti hain on Dil Se Keh Do on Retro to Right Now with Niloufar on East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: ईस्ट एफ एम पे सोमवार का खबरनामा दिन 2 बजे. पहले खबरों की सुर्खियां. 2 बिल्स पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर. मुर्कमन को हटाए जाने की मांग. ईसाई नेता की चाइना से रिहाई और अली खमनेई के जनाजे की रस्में अवाम का हुजूम. खबरें तफसील से. सदर विलियम रूट

0: एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ पटिशन जमा करवाई जाएगी। आलमी खबरें। चाइनीज धार्मिक नेता जिन मिंगरी को कैद से रिहा कर दिया है सदर ट्रंप की दरखास्त पर। जिन अमेरिका रवाना हो चुके हैं। जायोन चर्च के बानी को अक्टूबर माह छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ईसाई इदारों के मुताबिक ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन था मजहबी कार्रवाइयों पर। ईरान के आला रहनुमा अली खमनेई का जस्ते खाकी यानी बॉडी मुसल्ला की मस्जिद में रखी है जहां ईरानियों का हुजूम दीदार के लिए निकला है। जुमेरात के रोज़ खमनेई में आपको सुपुर्द खाक किया जाएगा। 15-20 मिलियन ईरानी ईरान और इराक में आखिरी रस्मों में शरीक हैं। वेनेजुएला के जलजलों में जान बहक होने वालों की गिनती रोज बदलती है। अब आलमी बचाव टीमें घर जाने के लिए तैयार हैं। 24 जून हुई इस कुदरती आफत में 3,000 जाने जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 50,000 वेनेजुएलन्स का अतापता नहीं है। और पेरू की पूर्व नेता अल्बर्टो फुजिमोरो की बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता करार दे दिया गया है। 51 साल कीको फुजिमोरी ने 50% आवाम के वोट हासिल किए। कीको ने चौथी मर्तबा सदर का चुनाव लड़ा। लेफ्ट विंग उम्मीदवार रॉबर्टो सांचेज ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के पोते को पुलिस ने दो विदेशी लड़कियों के बलात्कार के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। रजा डार को पंजाब की सूबाई सरकार से मदद मिल रही है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि रेप के आरोप के बाद इसहाक डार को ओहदे से हट जाना चाहिए। लाहौर अदालत ने 4 आदमियों को पुलिस तहवील में भेज दिया है। ये थी आज की खबरें। मैं हूँ परवीन आदम।
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
2: All right, so we are in the second hour of the show already, and I don't know where the time is flying, running, whatever it is doing, but it's going so fast. Imagine we are already in July. मेरा बर्थडे भी आने वाला है, अभी तो गया था, वापस क्यों आ गया समझ में नहीं आ रहा। यू नो बर्थडे इज आई डोंट नो, आई एम अ टिपिकल कंसेरियन। मोस्ट ऑफ द कंसेरियंस आई हैव सीन आर लाइक मी, दे डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट बर्थडे। लाइक नहीं यार, फिर बुड्ढे हो जाएंगे, एक साल और नहीं चाहिए बर्थडे। बट अगेन इट्स अ टाइम टू बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड से यू नो व्हाट, वन ईयर डन, वन मोर ईयर, या मूविंग अहेड, यू नो, ग्रोइंग वाइजर आई फील। Am I? I don't know. It's my birthday month. What about you? Is it your birthday month too?

0: अभी तो दोपहर है, इसकी शाम हम बनाएंगे शानदार. एज यू एंजॉय द म्यूजिक ऑन ईस्ट एफएम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स, यू विद निलूफर ऑन रेट्रो टू राइट नाउ. आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू ऑन बॉलीवुड एंड बियॉन्ड इन दिस आवर एंड आल्सो ऑन बकवास 21.
1: डू यू हैव अ कमेंट और कंप्लेंट अबाउट ईस्ट एफएम, वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स और अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम? There are a number of ways you can make a complaint or comment. You can send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Oh.

0: right, so three statements on Spot the Bakwas. You have to tell me which one is true and which one is Bakwas. चलो देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश इज कमिंग टू मी ओके सो फर्स्ट वन मेल स्ट्रीप यू नो द वेरी फेमस एक्ट्रेस हैज वॉन टू अकेडमी अवार्ड्स इज दैट ट्रू और बकवास सेकंड वन इडीना मेंजल हु सिंग्स लेट इट गो यू नो आई डोंट वांट टू सिंग बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर 20 टाइम्स इन द सॉन्ग लेट इट गो फ्रॉम फ्रोजन And the third one, in Harry Potter, Draco Malfoy has no siblings. Is that true or is that Bakwas?
1: Don't just listen, choose it. Request your song now on Retro to Roy Now.

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट

0: No one plays more of your Bollywood favourites. Dot East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: तुम्हारी नजर ने हमारी नजर से जो वादा किया है उसे तोड़ ना देना, बीच राह में हमें कभी छोड़ ना देना।